0: 11 de la mañana, 23 minutos.
1: ¡Ah! ¡Sí, Radio! 105.9. सिर्फ इतना जानता हूं कि जिंदगी में वो जो कुछ भी कर सकता था, जो कुछ भी बन सकता था, उसने वो सब अपनी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर दिया। सिर्फ इतना जानता हूं हम जीत गए कि आज भी वो उसी लड़की से मोहब्बत करता है और वो मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है।
2: आशा कभी ये समझ पाता कि मोहब्बत बहुत खूबसूरत होती है, तो क्या हुआ अगर अपने साथ थोड़ा सा दर्द।